0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में

श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनर्समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। एफआईएच हॉकी

0: की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSP के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत

0: के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर

0: ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: এ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া নিবেদন কৰিছো পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं पूर्णिमा बसुमतारिया गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव राज्यो सरकारा सोलोंथाइ खोन्दोआव नाजावनाय राहानि फिथाइ महरै फरायसाफोरा फरायनो नागारनायनि बिबाङा गोदोनिख्रुइ खम जाबोबाय होननानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्री डक्टर रनस बेगुवा बुंदों फारसेथिंजाय एलिमेन्ट्रि लेभेलावबो आगोलनि रुजुनायाव 3.8% %5 खमिबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो सेकेन्डारि लेभेलावबो 17.5% खमिबोनो हमदों बे बेलायाव मन्त्रि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बे खारिथिनिफ्राय जों रोखा जानो हाबायदि गासै हादाबसायावनो सरकारि फरायसालिनि फारसे फरायसाफोरनि गोसो बोनायखौ जों नुनो मोन्दों मेघालयनि राजथावनि शिलंआव थांनाय बुधबारै जालांनाय हिंसायारि जाथायनि उनाव आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ फोजोबनो थाखाय गंनैबो रायजोनि सोरखारा साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों रायजो सरकारा बे जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मेघालयनि गिबि मन्त्री कनराड के सांमाजों मोजाङै रायज्लायनानै गासै जाथायनि सायाव गुवारै मिन्थिनानै लायो बिथांमोना आसामनि रेजिस्टार जानाय गारि आरो ड्राइभारजों लोगोसे शिलंसिम थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोरनि रैखाथि राहाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायो बेनि उनावनो गिबि मन्त्री बिथाङा सीमा रैखाथि जौगाखां बिफाननि मन्त्री अतुल बराखौ बावैसो जालांनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव मोजाङै नोजोर होनानै बेखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि राहा लामा दिहुननो थाखाय बिथोन होयो गिबि मन्त्री बिथाङा मेघालय हादाबसाखौ जोंनि आसामनि बिनानाव रायजो होननानै बुङो आरो गंनैबो रायजोनि गेजेराव थानाय जारिमिनारि समाजारि हारिमुवारि सोमोन्दोनि खोथाखौ फारियै मख'यो फारसेथिंजाय मेघालयनि गिबि मन्त्री कनराड के सांमाया मैया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रीजों जाथायनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनाय खोथाखौ फोसावो गासै थासारिखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे गंनैबो रायजोनि गेजेराव गोजोन फोथायलायनायखौ फिन लाबोफिननो थाखाय मन्त्री आफादनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव थाबैनो सावरायज्लायनाय जागोन होननानै सरकारि रादाब सुलुंनिफ्राय मोन्थिनो मोननाय जादों खासि फरायसा आफादनि मुं लानानै खायसे थिउरियाफोरा आसामनिफ्राय थांनाय दावबायारिफोरजों लोगोसे बिसोरनि गारिफोरनि सायाव खालामनाय हामलाखौ हादाबसा बिजेपि हान्जाया गोख्रों रावजों सोंखारिदों मैया बाजपेयी भवनाव जानाय मोनसे रादाब बुथुमगिरिफोरनि मेलाव आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव थांलाय फैलाय खालामग्रा टेक्सि ड्राइभारफोरनि जिउखौ गेजेरै रैखाथि होनो थाखाय सरकारखौ खावलायो हादाबसा बिजेपिनि लेंथुमगिरि कमल कुमार मेथिया बुङोदि खुद्रिसारनायनि मुङाव थिउरियाफोरा हिंसायारि जाथाय खालामनाया मालाबाबो गनायथावना जानो हाया होननानै

राज्यनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनो लन होनायनि बेलायाव हादाबसा सरकारा खायसे जर'खा हाबाफारि नाजावदों बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनो 10,00,000 रांसिम पार्सनेल लननि डकुमेन्ट्सफोराव दानिफ्रायनो स्टेम मासुलखौ फुराय रेहाय होनाय जाबाय बे लनफोरखौ लानायनि थांखिया जानांगोन इनकाम खालामनाय फिसा इन्डास्ट्रिफोर गायसननाय बे खाबुखौ गासैबो कमार्सियेल बेंक ग्रामीण बेंक एपेक्स बेंकफोराव मोननो हागोन गिबि मन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीजों दै बानायाव गाज्रि खहा जाजानाय नखरफोरखौ फिन फसंफिननाय आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायज्लायो मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बिथां मोदीया गासै खहा जाजानाय नखरफोरखौ नांगौ रोखोमनि मदद खालामगोन होननानै खोथा होयो गंसे गोख्रों जौगासार महरै आसामखौ दाफुंनायनि नोजोर लानानै मिरु सरकारजों लोगो जानानै ज'यै खामानि मावलांगोन होननानै बिथां गिबि मन्त्रीया बुङो बेनि उनावनो बिथां गिबि मन्त्रीया मिरुनि दै आरो गोहोनि बिफानि मन्त्री सि आर पाटिलखौ लोगो हमहोयो बेवहाय जलजीवन मिशनखौ बांसिन गोख्रों खालामनायनि राहा आरो हिलखाख' बिलखौ फिन मोजां खालामफिननाय आयदाखौ लानानै सावरायज्लायो बे बिलाव फिन दै थाफिनहोनो हानाय बादिहाय 237 कौटि रां बाहायनानै फैगौ बोसोरनि मादानो बेखौ मावफुंना फोजोबगोन होननानैबो बिथाङा रादाब बुथुमगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो जौसे 135 जारिमिनारि दुनार काप फुटबल बादायलायनायनि फाइनेल गेलेनाया गाबोन कलकातानि बिबेकानन्द जुब भारती गेलेनाय फोथाराव महन बागान सुपार जयन्ट आरो वेस्ट बेंगल एफसिनि गेजेराव जागोन थांनाय हराव शिलंआव जानाय नैथि बादायलायनायाव गेलेनायनि सेमि फाइनेलाव महन बागाना थांनाय मोननै बोसोरनि चेम्पियन नर्थ इस्ट इउनाइटेडखौ ट्राइबेकाराव 4-3 गलाव फेजेनो बेनि सिगां वेस्ट बेंगला गिबियावनो सेमि फाइनेलाव एफसि दिल्लीखौ फेजेन्दोंमोन मख'जाथावदि महन बागाना 17 डनाल्ड कापआव देरहानायनि बेरेखायै इस्ट बेंगला 16 खेबाव डनाल्ड कापआव देरहानो हादों बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै

खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडिया मैफिनि 411.5 मिटाराव आरो एफ एम बेन्डनि 101.6 मेगाहार्ट्जआव बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्ट्ज आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्ट्जआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं लोगोसे निउज अन एआर मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं दिनै स्टुडिय' दङ आं नगेन दैमारि आरो आंजों लोगोसे दङ पुर्णिमा बसुमतारि दान्दिसे उनावनो नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनलांसिगोन मेलेरिया बेरामा रोखोमसे गिलु बालु बेराम नोंथाङा खनले खनले लोमजाबाय थायोब्ला खाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थांनानै थैखौ आनजाद खालामहो उन्दुनाय समाव थाम्फै अरजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नेट एबा मुसारि सोंनानै उन्दुनो दाबाव लोंनाय दैखौ फिल्टार खालामनानै एबा सरनानै ग्लब ग्लब गोदौजासे फुदुंना गुसु खालामनानैसो लोंनांगौ बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया जों फोसावनो लानाय जादों थुनलायारि आयदा जों दिनै बे आयदा फोसावनो लानाय जादों

0: अन्जली सरगियारिया गावनो माखासे खन्थाइ सुजुनानै नैबे गिबि फोसावनाय बे आवरायनायखौ बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंदो दिनैनि थुनलायारि आयदायाव गिबि फोसावजेननाय अन्जालि सरगियारिया गावनो माखासे खन्थाइ सुजुनानै नैबे आवरायनायखौ।
1: जिउ गाथोननि दिङा जावलांगोन दिङा लोरगि हमै हमै बे गोथौ लैथोआव आं दैमाया जेसेबांनो दै दाहार आरो अन्थाइ थाफाजों आबुं जायाथों मानो अब्लाबो थाबथानाय नङा आंनि बैथा बोहैलांगोन गुवार लैथोमा सिंखावलांगोन आंबो बेनिनो दै गुथालनि रुगुं फारसे थांखि होसोनाय सिमां नोरोग नायनो लुबैनाय मेगन गोरबो जाहार देंखो सिमां हाजोलिनि गाब होनो आं माबोरैथो थाद'नो जिउ गाथोननि दिङा हमालासे थुबदावनाय हाजोलारि बारलांगोन सुनस्रि सुनस्रि बेनिनो आंबो मिजिं होसोनो मेंग्लिनाय बिखानि गुदुं हां बैयै बैयै जिउ गाथोननि दिङा उनसंनानै बै गोथौ लैथो फारसे जावलांगोन दिङा बैथा हमै हमै उदांस्रि नै उदांस्रि नोंनि बिखायाव नोंनि थाखाय जों सानसि खाफ्रायो हारि हादोर सिबिनाय आरो जौगानायनि मिजिंजों नै उदांस्रि नोंनि हायाव जों बिखा बना होगोन थै होगोन बोलो फोरागोन सुजिगोन जों उदाङै थांना थानायनि मोन्थायजों सोमोन्दोआ जोंनि बिदा फंबायनि थैया जोंनि मोनसेनि जोनोमा जोंनि बर' बिमानि गोहोआ जोंनि नङा आखाइनि हाथियार बाहायगोन जों थें फाख्रि गाम्बारि आरो बिरगोस्रिनि गोहो बोलो लाना हारि हादोर सिबिनायनि खौसेथिनि लामायाव उदांस्रिनि लामायाव गाव गावखौ गसंथानो थांखिया नङा जोंनि फेलेंनि जिउ होगोन हां खोमागोन उदांस्रिनि थांखि लाना जोंनि हायाव जों उदाङै थांना थागोन आं आइजो आं बर' आइजो बर' बिमानि थैजों जोनोम मोन्दों आं आंनि थै रोदा रोदा गासैबो हाबना दं बर'नि आसार खान्थि रोंबावगौ आं बर' हारिनि हारिमुनि सिनायथि दानाय लुनाय आगर आखाइ एरखांनो आं बर' आइजो आंनि गाननाय जोमनाय गासैबो आंगो हारिमु दख'नायानो सिबियो आं आंगो धोरोम बर'नि बाथौखौनो नङा आंनि आसार खान्थि गुबुननि गोहोआ आंनि बर' बिमानिनो दं आंनावबो बिरगोस्रि थें फाख्रि आरो गाम्बारि सिख्लानि गोहो बोलो आं बर' औ आं बर' आइजो रोंगौ आंबो बर'नि सिनायथिजों गावखौ बोलोफोराना गसंथानो गोजाम गामि आंगोनि गामिया दा गोजानसिन जाथारबाय रोमै रोमै नुहुरनाय बै हाजो गुदियाव आंनि गोजाम गामि बेयावनो दंमोन सोमखोर मिथिंगानि बिखायाव रायजो जानाय बर' गामि बे गामिनि देंखोआ दाबो गोमखाङो रोमै रोगोमै जाखांफैयो मेगननि फैसालियाव गारबोनाय जिउनि दैथुन सुफुंनो हायै जारिमिन गोजाम गामियाव दा आंहा मेगन खानि नांनाय जारिमिन नागिरना मेंग्लिनाय गुबै नबथिनि सिनाय मोनै होंगो दोंगो सुबुं गोसोआ बबि जाना नागिरिल' बिनि गुमुर आरो हांगार जालांनाय खन्थुमजायै बाथ्राफोर गामिया दा सोलायबाय सिनायज्लायला सोहोराव हादान नागिर नागिर गामियाव दा आंनि आगान खारि बुथुमनो आं गोजाम गामियाव फुंबिलिनि आबिर नों फोजाफैनाय गोजा गलाप गुफुर मोदोमफ्रु बिबारजों रंजाखांदोंमोन गोरबोआ सिदोब सिदोब गुस्थिनि बाथ्राफोरा गांग्रसदोंमोन गोरबोआव गाब लुफाव फैनाय आजोलि जिउखौ हां होफैदोंमोन आरोबाव हायना सारफाव फैनाय मोदोमफ्रु मोदोमनाय समायसिन होदोंमोन जिउ रुबैनि सायनासालि आरो हारसिंथिखौ समायनानि मोन्दांथिजों जेबोला फुंबिलिखौ बरायदों।

मोन अब्ला गोरबोआव सोमजिदोंमोन गोबां बानबुंथिनि थफ्ला जेब्ला सोदोबफोरा नागिरसादोंमोन गोदान मिसिं आरो समायना जिउनि आबिर निन गोमानाय हर दानखोमसि अखोरांनि बिखायाव सिमां सासायनाय बुब्लि आरो हाथरखि फाग्लानि गाब लुफनाय मोखाङाव सांग्रेमानि सोरांजों आं थाबायदोंमोन लामा बे लामायाव आंनि अनगायै रावबो गैयामोन जेराव आं थाबाय थाबाय बे निजोम हर गेजेरावबो नोंनि सल' बुथुमनो आं हारसिङैनो दङमोन आरो लिरजेनदोंमोन आं गोरबोनि लाइजामाव नोंनि मुङै दोंसे सल' जाय सल'आ नों आरो आंनि लामा हान्थिनायनि आबुं महर दिनै दानखोमसि हरावबो मानो गियाखै आं हारसिङै थानो आरो निन गोमानाय हराव देंखो होयै होयै आं मानो गाबख्रावबायदों नों हमदां हादों ना जेराव नोंखौ गावनि खालामनो नोंखौ खाथियाव लानो नोंनि सल' लिरथुमना लानो आं जेब्लाबो हांखुर नों फै खोमसि हरनि समाव सावगारि एरखांनो आंनि थावनियाव जिउ बुब्लिनि बिखायाव सानैजों खेबसे रंजानो अब्लानो आंनि मेगननि निन खोमानो रावबो हानाय नङा जेराव नों थागोन गोरबो जाहाराव बिसम्बि सानजा अखोरांनि फुंबिलिनि जारौ आबिरा जेब्ला मोदान सारो गारबोनाय जिउनि गोसोखांथि मानोबा फैयो गोरबो हुब्लिरनो खालामफैयो दरसि मोखां निजोम बिलिफांनि मोखाङाव गोसोखांथिनि साया लाना मानोबा फैयो बिसम्बि बिलिरनो नों होफैनाय अन्नायनि थफ्ला गोरबो जिउ दैथुनि देंखो गाब लुफनाय मिजिंनि जायख्लं रुगुं मोनासुयै जिउ गाथोननि दिङा दाबोनो गोमोराखै गोरबो मोनसेयाव नों होनाय गोरबोनि अन्थोबा दाबोनो दं बिसम्बनि सल'आव रेगा जाना नोंनि मुङै सानस्रिनि लैथोआव थब्ल'ना गोथां मिजिंनि सिथ्लायाव नों थानायमोनब्ला दिनै समायसारगौमोन गोरबो बिखानि गांसो बारि आरो समायबावगौमोन नोंजों आंजों जिरायग्रा बै थावनिया दिनै बिसम्बि जानानैल' थाबाय नोंनि मोजां मोननाय देंखोआ गोमानाय देंखो मानो फैबावखो नों गोमानाय सोदोबनि देंखो होनो गारबोनाय जिउ दैथुनि देंखोआ दाबोनो गोमोराखै दाबोनो रिंखां फैबाय दं जिउनि देंखोआव सारोन जानाय बाराव सोदोबा आरोबाव बांसिनै आराव जायोब्ला गोमागोन आंनि जिउनि देंखोआव गुस्थिनि रानथाबनाय हां नों मानो फैयो देंखो गारबोनाय आंनि जिउनि देंखोआव नों बिखाखौ आंनि खामग्लिहोबाय गोदान मिजिंनि आगानाव आंदि दा नोंनि देंखोआव बबि जाना दं नों मानो मोनथियासै नोंनि गोमानाय देंखोनि खबाम आं माबोरै नागिरफिननो नों दा फैफिनसै देंखो आंनि जिउनि देंखोआव मेगन खेवदो हनै मेगन खेवदो फुं जाबाय दाउफोरा गाबस्रिबाय मुलुगा सोरांबाय फुंबिलिनि जारां सान सिखोला नुजाफैबाय सिखारदो बयबो साना नुजाबोबाय आगान फोलावदो गोसो होसारना जों बयबो ओंखारलांदोनि गाव गावनि थांखियाव हान्थिनांगोन जों लामा मुलुगनि दरबाराव मिजिंनि पुरियाव सौसिनांगोन सिमां हामां थांखिया जोंनि थांना थानायनि गोजोन खौसेथिनि नागिरलांनांगोन जों हाजोलारि सुनस्रि सुनस्रि गोथां जिउनि जारिमिन थेगदाव बेगदाव लामा गाबथा गाबथा हाद्रि बाला मानखो मानखो मोदोमनि जखम खालामा जासे लाबा थाबायनांगोन जों खौसेयै जारिमिना नङा जोंनि फोथाय खेबस' होलांनांगोन जोंनो बुहुमाव जारिमिननि बिथा समा सफैबायब्ला नों फैबायब्ला गोदान मिजिं लाना मिनिखैरियै गोरबोआव गाफुननो नों फैबायब्ला आंनि सेराव मोसागांबाय हनै खासि बिबार बिरग्लांनाय जोमैजों बिरफालांबाय हनै खासि बिबार हसारनाय खानाय बिलाइया फुरगेव जाबाय गां रज'नाय सिमांफोरा फारि लाबाय थं नागिरनानै
मैला

0: जाजालांनाय आगानफोरा खनथुमनो आथुरथार गोबां बाथ्रा नोंनि मोजां मोनफ्लेनायनि बाथ्राखौ बुफ्रुना होदो थाबैनो जों सानायनि लोगो हमस्लायनाय बारफुनाय खासि बिबारनि समावनो आं सोरजिगोन नोंनि मुङै गंसे नबथि जेराव थागोन नों आरो आं गोजोननि देरायाव
1: एसे सम नोंथांमोना दिनैनि थुनलायारि आयदायाव गिबि फोसावजेननाय आजोलि स्वर्गारिया गावनो माखासे खन्थाइ सुजुनानै आवरायनायखौ खोनानो मोनबाय थुनलायारि आयदायावनो जों दायो नोंथांमोननो खोनासंहोनो लाबावनाय जादों गिबि फोसावनाय जयन्त बर'आ गावनो दोंसे खन्थाइ सुजुनानै फरायथिनायखौ गंसे गोबाय देरा

जागोन फिसा, नों मोजां जा। एसआइ साख्रि मोन्ना उनाव दा बावगारलां। आथिखालाव बेबादिनो गोबां बर' बिमा बिफाफोरा मोदै हुगारनांदों। बिब्दि दा सान आयै, बिमा बिफानिख्रुइ देरसिन गैया रावबो आंनि थाखाय। मोनाबिलि सम सोनाब फैसालियाव जारौ मारौ सान सिख्लाया गोमो गोथां गोजा बायदि गाब गाबाय अख्रांमा बिखायाव। रोमै रोमै गावनि देरायाव आगान सुरलांबाय। सोरगिदिं मोज्लेद जानो लाबाय मिथिंगायाव। बारि खनानि औवा सुबायाव दाउसिन दाउलानि जि जा जा गाबनायफोरानो बारा जाबायसै। गामियाव नखराव नखर नखर रिथि रिथा लाइटनि सोराङा जोंसारफब्बाय। दुब्लिनिफ्राय मोसौ बोरमाफोरखौ गलियाव बयबो होबोबाय बै लामा सेरजोंनो। अरन बिमा बिबारिया मोनाबिलि समनि सिजौ गुदियाव गु गुरुब खुलुमदों। सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंना आफा आनान गसाय सिब्रायनियाव आर'ज गाबदों। बोसोर थाम बारलांबाय अरना एसआइ साख्रि मावनाया। गंसे गोबाय देरानिफ्राय दा समायना रमायना सिमांनि न' गंसेयाव थायो बिमा बिफाया। बै बुब्लियाव माब्लाबा बिरलांब्ला गोसोआ दाबो गोजांस्रिव मोनलायो अरनखौ। बै समाव हिमालय हाजोखौबो मानबायना बारलांनो हागोन सानोमोन। गोबाय देरायानो अरननि फुंखामोन।

एसेसम दिनैनि थुनलाइ आयदायाव गिबि फोसावजेननाय जयन्त बर'नि सुंद' सल' गंसे गोबायदेरा बेखौ खोनासंनो मोनबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि थुनलाइ आयदायाबो एसेनोसै। बे आकाशवाणी गुवाहाटी दानिया फोसावनो लादों मेथाइनि आयदा आनन्द बसुमतारी गारांनि बे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा गावनिनो

नोंथांमोना बे फोसावनायखौ आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मेडियम वेभनि 417.5 मिटाराव आरो 101.6 मेगाहार्ट्सआव आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्ट्सआव आरो आकाशवाणी धुबुरी सेन्टारनि 103.3 मेगाहार्ट्सआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ। मेथाइनि आन्जाद दाना खोनासंनो लादों प्रकाश कुमार दासनि कारण नैबे मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा विजय कुमार गयारी।

मेथाइनि आयदाया एसेनोसै बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी जोंहा स्टुडिय' समजाना फैनाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अन्नाय सिबिनायखौ फिनबावनानै दिनैनि बर' आफादखौ एसेयावनो थुंगि होनाय जाबाय गोजोन्थों।

0: আধুনিক কিটকিটি শুনিলে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতেই সমাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है,

0: 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
5: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ता

0: उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टर

0: और फिन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: কেতিয়া আহি পৰে হেয়া আগতীয়াকৈ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি। এনে সময়ত বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত ল'লে যিকোনো অসুবিধা সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰি।
3: বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সকলোৰে বাবে মন্নাপুৰম ফাইনেন্সলৈ আহিছে ইজি EMI গোল্ড লোন স্কিম।
2: এতিয়া আপুনি মাহিলী কিস্তিত সুদ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক পৰিকল্পনা হ'ব আৰু অধিক স্মাৰ্ট। অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনাৰ কাষৰ মন্নাপুৰম ফাইনেন্স শাখালৈ যাওক অথবা কল কৰক টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1-800-420-2233 নম্বৰত।
4: আর্থিক জরুরীকালীন পরিস্থিতি এনে সময়ত লওয়া এটা বুদ্ধিমানৰ সিদ্ধান্তই আপোনাক যিকোনো অসুবিধা সহজেই অতিক্রম কৰাত সহায় কৰে।
3: তেওঁলোকৰ বাবে মন্নাপুৰম ফাইনেন্সলৈ আহিছে ইজি EMI গোল্ড লোন স্কিম। আপুনি মাহেকীয়া কিস্তিৰ জৰিয়তে সুদ পৰিশোধ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বিত্তীয় পৰিকল্পনা আৰু অধিক স্মার্ট হৈ পৰিব।
4: অধিক জানিবৰ বাবে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী মন্নাপুৰম ফাইনেন্সৰ শাখাত যোগাযোগ কৰক বা আমাৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1-800-420-2233 কল কৰক।
5: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আৰম্ভ কৰিছো চিত্ৰগীত অনুষ্ঠানত। প্ৰথমে শুনক এৰাবাটৰ সুৰ ছবিৰ এটি গীত, লতা মংগেশকাৰ আৰু হেমন্ত মুখাৰ্জীৰ কণ্ঠত।